अस्सलाम वालेकुम सामिन, सदाए तुर्किया से मुखातिब में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 5 सितंबर प्रोस हफ्ता है। इस वक्त अंकरा के मकामी वक्त के मुताबिक सुपहर की 3 पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम के 5, भारत के वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 और बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजे हैं। सामिन, आप मनशियात को शॉर्टवेव 16 मीटर बैंड 17,580 किलोहर्ट्ज के अलावा तुर्किया 3A ईस्ट और 4A वेस्ट में हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। सामने आज हमारे प्रोग्राम में अलग तरतीब खबरें और सिलसिला प्रोग्राम देने वाले हाथ की कहानियों फीचर पेश किए जाएंगे। हमारा प्रोग्राम हस्ब मामूल 1 घंटे तक जारी रहेगा। आज आपके मेज़बान हैं इमरान ओपल।

क्या आप जानते हैं कि जिस ट्रेडमिल को आप हर रोज जिम में इस्तेमाल करते हैं उसकी तारीख क्या है? 1800 की दिहाई में कैदी रोजाना 6 घंटे इन मशीनों पर गुजारते थे। वो माउंट एवरेस्ट की आधी ऊंचाई जितना सफर रोजाना पैदल तय करते। एक तशद्दुद के आले से लेकर फिटनेस मशीन बनने तक ट्रेडमिल की स्याह तारीख अब शुरू होती है। ट्रेडमिल खास तौर पर खेल और फिटनेस के लिए लाजमी मशीन है। आजकल जो मशीन जिमों की जीनत बनी हुई है, माजी में वो कैदियों को सजा देने के लिए इस्तेमाल होती थी। आज हम जानान बिलगिजी और नाज इरम उस्तुंदा के इस मौजू पर बात करेंगे जो उन्होंने TRT न्यूज के लिए लिखा है। तो आइए सुनते हैं ट्रेडमिल की ये दिलचस्प कहानी। ट्रेडमिल्स को 1800 की दिहाई में बरतानवी कैदियों को सजा देने के लिए बनाया गया था। उस दौर में बरतानवी जेलों का निज़ाम इंतहाई अबतर हालत में था। फांसी और जिला वतनी पसंदीदा सजाएं थीं। कैदियों को इंतहाई गंदे खुलियों यानी काल कोठरियों में बंद करके दुनिया से अलग थलग रखा जाता था। इस सूरत हाल को बदलने के लिए कुछ रजाकारों ने मदद करने की कोशिश की। इसके नतीजे में ट्रेडमिल जैसी कैदियों की इसलाह के नए तरीके सामने आए। ट्रेडमिल को हमारे जिंदगियों में 1818 में एक बरतानवी इंजीनियर सर विलियम क्यूबिट ने मुतारिफ करवाया। ताहम ट्रेडमिल बनाने का मकसद सेहतमंद जिंदगी गुजारना या चर्बी पिघलाना नहीं था। ट्रेडमिल को एक तशद्दुद के आले के तौर पर डिजाइन किया गया था। जब क्यूबिट ने सेंट एडमंड्स जेल में कैदियों को बेकार और सुस्त बैठे देखा तो उनके जहन में एक दिलचस्प ख्याल आया। उन कैदियों की जिस्मानी ताकत को इस्तेमाल में लाया जा सकता था और उनसे ज्यादा सख्त सजा का काम लिया जा सकता था। चुनांचे क्यूबिट ने पहली ट्रेडमिल डिजाइन की। पहली ट्रेडमिल दरअसल एक बहुत बड़े गोल घूमने वाले पेज की तरह थी जिस पर एक दर्जन के करीब कैदी एक साथ दौड़कर उसे घुमाते थे। ये सीधा दौड़ने के बजाय मुसलसल सीढ़ियां चढ़ने जैसा था। कैदियों के लिए मुसलसल हरकत करना जरूरी था क्योंकि अगर वो रुकते तो नीचे गिर जाते। उनकी इस हरकत से गंदम पीसने, पानी खींचने या कानों में ताजा हवा पहुंचाने के लिए जरूरी तवानाई पैदा होती थी। कैदियों के अलावा हर कोई इससे फायदा उठा रहा था। सरासर अजाब। इस इजाद के बाद अगले 10 सालों में 50 बरतानवी और इतनी ही तादाद में अमरीकी

माहौल को एक बेहतरीन हल समझा। 1875 में एक मकामी इलाके ने ट्रेडमिल को जेल के नज्म व ज़ब्त में एक बड़ी तरक्की करार दिया, जबकि जेल डिसिप्लिन इम्प्रूवमेंट सोसाइटी ने इसे एक अबरतनाक सजा का नाम दिया। यह समझा जाता था कि जो कोई भी एक ट्रेडमिल की सजा भुगत लेगा वो दोबारा कभी कोई जुर्म नहीं करेगा। वो रोजाना माउंट एवरेस्ट की आधी ऊंचाई जितना चढ़ते थे। अंदाजों के मुताबिक कैदी रोजाना 6 घंटे इन ट्रेडमिल्स पर गुजारते थे। ये औसतन 1500 से 4200 मीटर की ऊंचाई चढ़ने के बराबर है। 4267 मीटर की बुलंदी दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट का आधा रास्ता है। क्यूबा का ये डिजाइन बरतानवी सल्तनत की सरहदों को पार करके अमरीका में भी तेजी से फैल गया। इस शदीद मशक्क़त के मिलाप ने ज्यादातर कैदियों को माजूर और जख्मी करना शुरू कर दिया। ट्रेडमिल 19वीं सदी की जेलों के बुरे हालात की अलामत बनकर रह गई। इसके नतीजे में 1898 में ट्रेडमिल के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। में अमेरिका में पेटेंट होने वाले ट्रेडमिल का तिब्बी इस्तेमाल बहुत बाद में यानी 1952 में डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस ने अपने एक साथी पर तजुर्बात करने के बाद शुरू किया। डॉक्टर ब्रूस के इन तजुर्बात ने इस टेस्ट की बुनियाद रखी जिसे आज ब्रूस कहा जाता है, जिससे ये मालूम किया जाता है कि दिल सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। 1960 और 1970 की दिहाइयों में कार्डियो वर्जिश के मकबूल होने के साथ ही ट्रेडमिल्स पहले जिमों में और फिर हमारे घरों में दाखिल हुई। इस तरह हैरत अंगेज और तंज आमेज तौर पर एक जमाने का तशद्दुद का आला आज सेहतमंद जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो क्या आप जानते थे कि आज जिम में इस्तेमाल होने वाले ट्रेडमिल के पीछे इतनी तारीख छुपी हुई है? हमारे अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।